0: कसाब को तरजीह देती है। एर्दोगन इस बात पर जोर दिया, तरक्की पसीर मुल्क के तरक्याती हकूक की भी जमानत होनी चाहिए। उन्होंने कहा तुर्किया मजीद मनसफाना और जामिया बैन अवी नज्म के लिए सफारकारी में अपनी ताकत का इस्तेमाल जारी रखेगा।
1: तुर्की के महकमा बरए इंसदाद जाली खबर रसानी DMM ने ऐलान किया है कि युगंडा मुसल्ला फौज के सरबराह के बारे में तुर्क वजारत खारजा के लोगों और लेटर हेड के साथ जारी किया गया बयान जाली है। DMM ने पीर को जारी करदा बयान में कहा है कि वजारत खारजा के निशान और लेटर हेड का इस्तेमाल करके युगंडा मुसल्ला फौज के सरबराह महूसी कनेरो गाबा की धमकियों के बारे में के जेर उनवान शाया होने वाला मतन मुकम्मल तौर पर जाली है। कंपाला में हमारे सफारतखाने ने ऐलान किया है कि ऐसा कोई बयान या ऐलान हमारी वजारत खारजा या सरकारी मुवासलाती इदारे की वेबसाइट या सरकारी जराए ब्लाग के चैनलों पर नहीं है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि मस्कूरा झूठी दस्तावेज को डिजिटल जराए का इस्तेमाल करके तैयार किया गया है और इसका मकसद आवाम को गुमराह करना है। बयान में दरख्वास्त की गई है कि गैर हकीकी मालूम और जाली दस्तावेजात के जरिए फैलाई जाने वाली इस नोयत की गलत मालूम पर भरोसा न किया जाए और सरकारी मालूमात के लिए सिर्फ जम्हूरिया तुर्की के मुतल्लिका सरकारी इदारों के इशाअती चैनलों से रुजू किया जाए।
0: तुर्की अमरीका ने जोरी तवानाई में गहरे ताउन की जानब मजीद एक कदम उठाया है, जिसके तहत तुर्किया न्यूक्लियर एनर्जी कारपोरेशन अमरीकी ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स और चौथी नस्ल के रिएक्टर टेक्नोलॉजीज का जायजा लेने के लिए ग्रांट माहदे पर दस्तखत किया है। यह माहदा न्यूयॉर्क में टर्किश हाउस में मुकाम तक जन असम्बली के लिए अमरीका के दौरे पर मौजूद सदर रजब तैयब एर्दोगान की मौजूदगी में तय पाया। मंगल को वज़ीर तवानाई कुदरती वसायल अरसलान बायराक्तार ने कहा, यह मनसूबा तुर्किया के लिए अगली नस्ल की जौहरी टेक्नोलॉजीज की तकनीकी इक्तसादी ज़ाब्ता जाती काबिलियत का जायजा लेगा। बायराक्तार ने कहा, तावन 2053 तक सिफर खालिज अखराज के हदफ के हसूल में मुआमिन होगा। साथ ही तवानाई को खुद मुख्तारी को मजबूत करेगा, मुल्क के तवानाई के मौज़ को मतनू बनाएगा। उन्होंने बताया, हम अपने बड़े पाने के जौहरी तवानाई प्लांट्स के अलावा एक और मजबूत जदीद तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए पुरअज़्म अंदाज में आगे बढ़ते रहेंगे।
1: शाम के सदर अहमद अल शरा अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं। शाम के सदारती ज़राए के मुताबिक न्यूयॉर्क में अपने मसरूफियात के आगाज़ में शरा ने आज बरोज मंगल अमरीका में मुकीम शामी कम्यूनिटी के अराकीन से मुलाकात की। इस इजलास में वज़ीर ख़ारजा असद हसन शीबानी, आफात व हंगामी हालात इंतजामिया के वज़ीर राद अल साले और पास दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान शरा ने शाम में ताज़ा तरीन पेशरफ्तों, गुज़श्ता दौर में रिकॉर्ड की गई कामयाबियों और मुल्क की तामीर नौ और बहाली के अमल का जायजा लिया और मुख्तलिफ उमूर पर शुरका की आरा और तजावीज़ को सुना। उन्होंने दमिश्क वाशिंगटन ताल्लुकात की तकवीत और तरक्की में अमरीका में मुकीम शामी कम्यूनिटी के किरदार की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि शाम की तामीर नौ की कोशिशों में बैरून मुल्क मुकीम शामियों की महारतों और तआवुन को कुलीदी अहमियत हासिल है। वाज़ेह है कि सदर अहमद अल शरा मुसलसल दूसरी बार अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करेंगे। उन्होंने सितम्बर 2025 में 80वें इजलास में शिरकत की और यह शिरकत 1967 के बाद इस इजलास में पहली शामी शिरकत थी।
0: तुर्किया वज़ीर ख़ारजा कान फिदाना है अक़वामे मुत्तहिदा के 81वीं जनरल असम्बली के सिलसिले में न्यूयॉर्क में अहम सफारती मुज़ाकरात किए। वज़ीर फिदान तुर्किया मिस्र पाकिस्तान सदर के वज़ीर ख़ारजा के छठे इजलास में शिरकत की, जिसमें इलाके व आलमी अमूर पर आला सतह पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया, इजलास इंतहाई जामिया और मुफीद रहा है। लावाज़िम वज़ीर फिदान ने मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, कतर, मिस्र, पाकिस्तान सदर उर्दन के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत से मुनक़िद होने वाले इजलास में भी शिरकत की और तुर्किया के कसीर जहती सफारती सरगर्मियों का सिलसिला जारी रखा। ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: बरतानिया के वज़ीर आज़म एंडी बर्नहम ने कहा है कि बरतानिया ने हूसियों के हमलों को पसपा करने के लिए सऊदी अरब को महदूद फौजी मदद फराहम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। बर्नहम ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असम्बली जाते हुए तैयारी में सहाफ़ियों के साथ बातचीत में कहा है कि रॉयल एयरफोर्स ने सऊदी तैयारों के लिए हवा में ईंधन फराहम करने पर रजामंदी जाहिर की है। मनसूबे के मुताबिक आरसी मुआहदा चंद हफ्तों तक जारी रहेगा, ताहम इसका फ़ाल जायजा लिया जाएगा। उन्होंने तस्दीक की है कि यह मिशन आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा और एक RAF वायजर टैंकर को दिफाई ऑपरेशन के लिए सऊदी जेट तैयारों में ईंधन की भराई के लिए तैनात किया जाएगा। कुलीदी हैसियत के समंदर पार पेट्रोल पाइपलाइनों का हवाला देते हुए बर्नहम ने कहा है कि मैं बरतानिया और वसी तर खत्ते के मफादात के तहफ़ के लिए काम कर रहा हूं, क्योंकि सऊदी अरब पर हमले का और मजीद खलल पड़ने का खतरा है। हमें इन ट्रांजिट रास्तों को खुला रखने की ज़रूरत है।

0: वाज़ह है कि यमन में तनाज़ात फिर से भड़क उठे हैं। हूसी बागियों ने सऊदी सरजमीन पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं।
1: अमेरिका के तुर्की में सफीर नुमाइंदा खसूसी बर शाम टॉम ब्रॉक ने कहा है कि वाशिंगटन अंकरा के दरमियान रूसी S-400 फजाई दफाई निज़ाम के खरीदारी के हवाले से इख्तलाफ हल हो जाएगा। न्यूयॉर्क शहर में टर्किश हाउस के बाहर पीर को साफे से बात करते हुए बराक ने कहा अमरीकी और तुर्की में दो तरफा इलाके में मिसाइल के हल के लिए अंतर कोशिशें कर रही हैं। उन्होंने कहा तुर्की अमरीका के दरमियान ताल्लुक पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। दोनों अफ्रीकन के दरमियान रवाबत मुसलसल जारी रहते हैं। जब S-400 के मसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इख्तलाफ अमरीकी कवानीन बशमूल अमरीका के मुखालफिन को पाबंदियों के जरिए रोकने का कानून खादसा और S-400 निज़ाम की अमनी हालत मुल्कियत से मुतल्लिक तकाजों की वजह से है। उन्होंने कहा इस पर काम जारी है, इससे ताल्लुकात का मसला उन्होंने करार दिया।
0: यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा आला बराए खारजा अमूर काजा क्लास ने रुकन ममालिक से बहरा अहमर में यूरोपीय यूनियन की मेरी टाइम सिक्योरिटी मिशन को मजबूत बनाने के लिए इजाफी जंगी बहरी और हवाई जहाज़ों की तायुनाती का मुतालबा किया है। काजा क्लास ने मंगल को अकवाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली के दायरा कार में मुनक्कदा यूरोपीय यूनियन वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के बाद न्यूयॉर्क से जारी करदा बयान में खबरदार किया है कि मौजूदा बहरी ताकत बढ़ते हुए खतरात से निपटने के लिए नाकाफी है, लिहाजा रुकन ममालिक को बहरा अहमर में यूरोपीय यूनियन के मैरीटाइम सिक्योरिटी मिशन में इजाफी जंगी बहरी और हवाई जहाज़ों को भेजना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आप नए बाबुल मंदब के इर्द गिर्द बहरी खतरात में इजाफे के बायस ऑपरेशन स्पाइडर्स को वसत दी जानी चाहिए। अगर बहरा अस्वद आप नए हुरमस और बाबुल मंदब में सरो सफर मुअत्तल होता है तो इन अहम समंदरी गुजरगाहों के असरात इनके अपने महल वकूह से कहीं ज्यादा दूर तक फैल सकते हैं। मिशन को बढ़ते हुए दबाव का सामना है। वाज़ह है कि यमन में हूसियों के हमलों से तजारती बहरी जहाज़ों को बचाने में मदद के लिए 2024 में ऑपरेशन स्पाइडर्स शुरू किया गया था। यह दिफाई मिशन बहरा अहमर और इर्द गिर्द के पानियों में काम करता और तजारती जहाज़ों की हिफाजत करता है।
1: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर जोर दिया है वो रूसी डीजल रिफाइनरी पर हमले न करें। रोज़नामा फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने ईंधन की बढ़ती कीमतों पर हदशात का इजहार करते हुए सदर ज़ेलेंस्की से कहा वो रूसी ऑयल रिफाइनरी पर हमले बंद कर दें। यूक्रेन के एक सीनियर एहलकार ने कहा इतवार की मुलाकात के दौरान ट्रंप के पैगाम का मरकजी मौजू डीजल डीजल और डीजल ही था। ट्रंप ने पास जारी करदा बयान में कहा रिफाइनरी बंद होने की वजह से रूस अपनी डीजल ईंधन की सनत पर कंट्रोल से महरूम हो चुका है।
0: जापान में दोयान तूफान के बाईस चार अफराद हलाक हो गए हैं। जापान मौसमियाती एजेंसी ने कहा है कि दोयान तूफान जापान के वस्ती और मशरकी इलाकों की जानब बहर ओकियानूस के साहलों की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की वजह से मुमकिन शदीद बारिशों और जलजलों के खतरे के पेश नज़र दारुलहुकूमत टोक्यो के 100 किलोमीटर जनूब में वाक़ अज़ो जज़ायर के सबसे बड़े जजीरे अज़ुवाशिमा में बुलंद सतह का अलार्म जारी कर दिया गया है। यह तूफान जापान भर में जारी 5 रोज़ा तादीलात के दौरान आया जिसकी वजह से दारुलहुकूमत टोक्यो में ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मुतासर हुई और बास प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए हैं। तूफान के बायस 45,000 घरों की बिजली मुनक़ते हुई और तवक्को है कि यह तूफान टोक्यो के मशरक में वाक़ चीबा सूबे से भी टकराएगा।
1: कम से कम 160 मारूफ आयरिश खिलाड़ियों ने खुले खत पर दस्तखत करते हुए जमहूरी आयरलैंड की कौमी फुटबॉल टीम से मुतालबा किया है वो इसराइल के खिलाफ अपने आइंदा के मैच का बायकॉट करे। आयरिश स्पोर्ट फॉर पलस्टाइन ग्रुप ने एक्स पर लिखा है आपके पास सही काम करने का एक मौका मौजूद है। खत में कहा गया है खिलाड़ियों को यह सिखाया जाता है तमाम खिलाड़ियों के साथ यकसां सलूक होना चाहिए लेकिन एक ऐसी आलमी इकदार खेल की इस हकीकत के साथ अहम आहंग नहीं होती जहाँ जाबराना इम्तियाजी ढांचे बार बार असर नो वजूद में आते हैं। इसमें कहा गया है सबसे ज्यादा फलस्तीन में वाज है जहां इसराइल कब्जे की वजह से इंसाफ मुसावा से इनकार किया जाता है। जुलाई में आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल असेंबली ने इसराइल के खिलाफ UEFA नेशंस लीग मैच के बायकॉट की तजवीज के खिलाफ वोट दिया था। इसके साथ ही तुर्की से खबरें खत्म हुई।

0: क्लिन ने पहली बार अपनी नई इजाद को पेटेंट किया। थोड़े ही अरसे में बहुत से अमरीकी असलाहसाज इदारों ने भी इस नई इजाद को आगे बढ़ाया, जो बैलिस्टिक सिल्क मटेरियल, स्टील प्लेट्स, मजबूत अस्तर कपड़े और चमड़े के पट्टे के निज़ाम पर मुश्तमिल थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बुलेट प्रूफ जैकेट फौजी और पुलिस दोनों महकमों का एक लाजमी हिस्सा बन गई और उसने बहुत से सियासी कत्लों की नाकामी में अहम किरदार अदा किया। आज टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ स्टील वास्केट की तैयारी में बहुत से मुख्तलिफ मवाद इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन बिलआखिर बहुत से लोग, चाहे फौजी, पुलिस या सियासतदान, जैगलिन की इस हादसाती ईजाद के मरहून मिन्नत हैं। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: इजादात।